0: ताश तुम कुफा भी
1: छिमी बोगे ले उलु हमारो तो नहीं लें ता सच्चे माता उसे ले हुए ही फलों से तिवरी से ये तो लियारा दे आकु नहीं मुझे छिमन दे जब जब मुसारे के जैसे सच्चे कुमाते लो तिवरी स्तुको जैसे सने सच्चे केरे थे हम उन उलु मलाकी हम जोफ्तो ने निकलो जिंदगी ने फसाई पमारो चाकु हुना ही निकलो आकु अविलिमुरा चिले तक ले उलु मुझे के छिमी बोगे सच्चे अंसानो माता उसे ले विरी से Zezan mahatunga nai taraiko kumateluani virisitu tivahoga. Madagasikara tindia nina fa atu yansimu antuliara musare.

0: तुमको वाह भी।
1: रे फामियांस नुल्ला नुना तिम्यासन तिक्यां सया आर मनाम प्यासियां ना तेरे कड़े ते तंबोप शिक्या दिमनुना निफितुंड्रान आर जन मनुना निफितुंड्रान सान्या तिम्यास फात्मियात्से शकुर फामियासा अम्फापंसुना आर मियासा न्यापंदिया निफितुंड्रान मातेत्या मायनो निबात्यान फरानिस नांगना आर निसन ताकेंतिफना वोजांतिया रानिस वोलुने कोलोनेल मिकाएला फारुआन मालाकास मेरा मेंजा आर साथिके नुम्तेनें जान चिशाबकनें दां जान चिशाबकनी शुलुतें जान या फसान मसावा आर जान तोम ततारं तिफिरेनेंती कदेमानों आच्छा बंद केरे चरेट सिमाइस्तातेराना फनवाना सिफना वोजने तोम तिफिरेनेंती चमूर जान शार्ट जान कनेर चिक्या स्तुकनी अंबुआ दीदियां जावड़ तुकनु तादेरा चिक आर चिक्या दे मनाम्पी आर रेफा मनाम्पी दे तेना मनाम्प मारना तेरे का फुकाचुआन फोका उड़न सोईता चिक जाओ
0: शोटा तुम कुला शोटा तुम वाव

0: तुमको वाफी
1: छिमी बोगे ले उलू हमारो तने लेंदा सटे माथा उछले हो फालो जति विरीसे ये तो ल्यारा दे आकु नेम जे छिमंदे जेम जे मुसारे के जे सटे कुमाथेलो ति विरीस्तु को जे सने सटे केरेथ हम उनु उलू मलाकी हम जोफतो ने ने दिन दिन फसाई पमारो छको हुना ने गेतो आकु अविलिमुरा छिलेता ले उलम जे के छिमी बोगे सटे अनसानो माथा उछले विरीसे zay zany mahatonga anay taraiky ho maty alohan'ny virus toy ty vahoaka Madagasikara, indrindra indrindra fa atoy antsimo antoliara mosare.